0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम चुनके दे वेर क्वारो
0: पियम चुनके दे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल यू नो कॉल मी पेने
1: इटीविनो और रेडियो
3: Yeah, yeah, yeah. Just land secret.

0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो
2: यू नो वी स्लेव स्क्वैट।

0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
2: कमांडर मिक्सोला
3: yeah.

0: मार मैं पाचो
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
2: ओडो डोना मनी यो दे कारमोक लोना चोली को दे पलीजी जाने पे

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यूम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो